अलिसा, तिमीलाई थाहा छैन है म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर। यो कुरा चाहिँ गोप्य राख है।